नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारम्भ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

0: खिलाड़ी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today. On a 3-day visit, Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, Prime Minister will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. These include inauguration of 232 grain storage godowns, Bhumi Pujan of Sahkar Van, Bhumi Pujan of tissue culture facilities in Uttar Pradesh and Maharashtra, launch of National Cooperative Database NCD 3.0 and Geotag mobile application, launch of National Dairy Development Board's Milk Supply Review Dashboard Portal. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team SIT probing the counting of donations received by the trust. The meeting will be held at the premises of Ram Temple at around 3 in the afternoon. According to an official notice issued on 28th of last month. The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Assam Cabinet has approved a series of major policy decisions aimed at strengthening emergency services, promoting industrial growth and improving governance ahead of the commencement of budget session of the State Assembly today. Briefing the media after the Cabinet meeting in Guwahati, Chief Minister Hemant Biswa Sarma said the Cabinet approved several bills to be introduced.

0: நார்வே 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசில் அணியை வென்றது. இந்நிலையில் பிரேசில் அணியின் முன்னணி வீரர் நெய்மார் சர்வதேச கால்பந்து விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்று நடைபெறவுள்ள போட்டியில் மெக்சிகோ இங்கிலாந்தையும் மற்றொரு போட்டியில் போர்ச்சுகல் ஸ்பெயினையும் எதிர்கொள்கின்றன. அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் அங்கிதா ரெய்னா, ஜப்பானின் ஹிரோகோ குவாட்டா இணை அமெரிக்காவின் கேத்தரின் ஹாரிசன், டலைனா ஹீலித் இணையுடன் தற்போது விளையாடி வருகிறது. உலகக்கோப்பை மகளிர் 2020 கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வென்றது. மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று முதல் 6 நாட்கள் இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொள்கிறார். நாடு முழுவதும் 50,000 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களை மின்னணு சங்கங்களாக மாற்றும் திட்டத்தை மத்திய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா இன்று புதுதில்லியில் தொடங்கி வைக்கிறார். எல் நினோ தாக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தாவேக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிஜேபி வலியுறுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியின் இரட்டையர் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் இந்தியாவின் அங்கிதா ரெய்னா, ஜப்பானின் ஹிரோகோ குவாட்டா இணை அமெரிக்க இணையுடன் தற்போது விளையாடி வருகிறது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது.
1: ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம். பிரவாசிகா நிதி ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः. अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इण्डोनेशिया देशं प्राप्स्यति. प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इण्डोनेशिया यात्रा वर्तते. अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इण्डोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रोवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति. संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति. तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति. परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति. जकार्तानगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीयप्रवासीसमुदायं सम्बोधयिष्यति. केन्द्रीयगृह एवं सहकारितामन्त्री अमितशाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारितामन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापनादिवससमारोहम् अलङ्करिष्यति. मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रियसङ्कल्पनामाधृत्य विधीयते. अस्मिन् मङ्गलप्रसङ्गे श्रीशाहः अनेकासां प्रमुखाभिनवपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति. एतासु योजनासु 32,200 अन्नसङ्ग्रहभण्डाराणां लोकार्पणं, सहकारवनस्य भूमिपूजनम्, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रराज्ययोः त्रिषु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनम्, राष्ट्रियसहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिकचिह्नाङ्कनदूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः. जम्मूकश्मीरकेन्द्रशासितप्रदेशे प्रचलन्त्याम् वार्षिक श्री अमरनाथजीयात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते. यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः. रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्. इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः. अनेन सहैव जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोजसिंहा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति. सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्मपुनरीक्षणं तेन कृतम्. देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत्स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता. येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं,

0: विद्युत्पातः प्रचंड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: நேரம் 7 மணி, ஆகாஷ்வாணி சென்னை.

0: नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। कुछ व्यक्तित्व समय की सीमाओं में नहीं बनते, उनके विचार और योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। ऐसे ही प्रखर शिक्षाविद, दूरदर्शी चिंतक और राष्ट्र जीवन की एक प्रभावशाली विभूति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। श्रोताओं, आपकी सुबह को खास मनाने के लिए हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके उल्लेखनीय योगदान पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही अगले 30 मिनट में हम आपके लिए लेकर आएंगे देश विदेश की अहम खबरें, इतिहास के पन्ने से आज के दिन की झलक, कुछ प्रेरक व्यक्तित्वों की बातें, दिलचस्प जानकारियां और साथ ही सुनवाएंगे आपके मन पसंदीदा गीत। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना आरेकल। नमस्कार नीना।
1: हेलो वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 5th of July 2026। एंड वैष्णवी, यू वर स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर मुखर्जी, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड few more facts and information about Dr. Mukherjee, that he was a formidable orator and a respected opposition leader, earning the title the Lion of Parliament for his incisive debates on issues like Jammu and Kashmir issue, migration between Pakistan and India, foreign policy of India, preventive detention, electoral reforms, etc. His unwavering commitment to Indian unity was exemplified by his fight for the integration of Jammu and Kashmir. His declaration, "I will get you the Indian Constitution or lay down my life for it," epitomized his dedication. Tragically, he died in 1953 while under detention in Kashmir, a loss mourned across political lines. Dr. Shyama Prasad Mukherjee remains an enduring symbol of patriotism and selfless service to India, remembered for his visionary leadership and unwavering dedication to national unity. And now Vaishnavi, let's begin with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. The 3-day session being organized by the United Nations Trade and Development, UNSCTAD, will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. One of the major highlights of the session will be the launch of United Nations Principles for Consumer Products Safety, which were adopted by the United Nations General Assembly in December 2025. India will host the 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning today in Kochi, Kerala.

0: Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group Committee meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus that advance women-led development. The BRICS Women Track has focused on four priority areas, which includes women in governance and leadership, women's digital and financial inclusion, women's entrepreneurship and skill development, and women's role in climate action, food security and nutrition.
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। और नीना, खेलों में आज आपके पास क्या है?
0: वैष्णवी, टुडे वी हैव न्यूज फ्रॉम वर्ल्ड कप फुटबॉल। Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat to Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition and their earliest World Cup exit since 1990, while Neymar's emotional farewell closed the chapter on an era that defined Brazilian football for more than a decade.
1: और अब क्रिकेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। वेद मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नीना, अब चलते हैं देश के प्रमुख शहरों की सैर पर, जहां आज दिन भर कई अहम गतिविधियां होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के तहत दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। वहीं राजधानी के कई इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र की साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया है कि इन इलाकों में सुबह 10 बजे से अगले 8 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
0: न्यूज फ्रॉम चेन्नई। IIT Madras Pravartak Technologies Foundation aims to train 10 lakh school and college students in the next 3 years in artificial intelligence, from foundational concepts to advanced tools that would prepare learners for new roles through online. At its Center for Human-Centric AI, IITM Pravartak is developing AI systems that augment human expertise rather than replace it. The initiatives of the center include sovereign AI language models for national audit institutions, AI-assisted neonatal congenital heart diseases, screening for rural healthcare, defense procurement intelligence, prison mental health support, heritage restoration, and immersive technologies for preserving India's civilizational legacy. Balamurli Shankar, Chief Knowledge Officer, IIT Madras Pravartak Technologies Foundation, said that currently about 1.5 lakh students, ranging from college students to rural school teachers, aspiring engineers, are studying AI-related certificate courses.
1: और चेन्नई से अब चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र सेवा संघ की ओर से 11 और 12 जुलाई को मुंबई के मुलुंड में 23वें गिरिमित्र सम्मेलन

0: का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष आयोजित होने वाला ये सम्मेलन पर्वतारोहियों का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है रणभूमि पर पर्वतारोहण। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के भूमिगत हिस्से के निर्माण में कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन TBM ने विखरोली शाफ्ट से सुरंग की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ये मशीन भूमिगत सुरंग बनाते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन तक पहुंचेगी।
1: News from Bengaluru, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has invited social institutions to work for the welfare of society, contribute in nation building and preserve cultural values. Addressing the National Symposium of All India Jangid Brahmins Mahasabha in Bengaluru yesterday, he called upon them to create awareness about social values and importance of nation building. He emphasized that the soul of social organizations lies in the welfare of society and nation. He acknowledged that the Jangid Brahmins community has made invaluable contributions in the areas of handicrafts, architecture, sculpture, carving and cultural heritage. Some more from Bengaluru. The Bangalore Electricity Supply Company, BESCOM, has made it clear that tenant beneficiaries receiving free electricity under Gruha Jyoti Guarantee Scheme need not to worry about the ongoing verification drive to identify consumers not eligible to reap the benefit of the free electricity scheme. In a media release, the agency has clarified that the benefits will not be withdrawn just for the reason that the Aadhaar details of the previous tenants are linked to the electricity bills. And now, what do we have from Kolkata, Vaishnavi?
0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में उनकी 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार श्री शाह न्यू टाउन स्थित इको पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद शाम में भवानीपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
1: News from Hyderabad. The Hyderabad Traffic Police have launched a special enforcement drive against vehicles using fake, tampered, altered or unauthorized registration number plates following a surge in public complaints. Authorities warned that such violations are illegal and will attract stringent action under the Motor Vehicles Act and other applicable laws. During the opening week of the ongoing crackdown, the police registered 5 criminal cases against individuals utilizing fraudulent registration plates to conceal vehicle identities, evade traffic enforcement and violate the law. Several vehicles involved in these offences were also seized. The cases were registered across multiple jurisdictions. Joint Commissioner of Police Traffic for Hyderabad City, D. Joel Davis, reminded vehicle owners that only government-approved high-security registration plates, HSRP, are legally valid. Number plates featuring altered fonts, missing digits, decorative designs, stickers, or any unauthorized modifications remain strictly prohibited.
0: नीना, देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब ये धीरे धीरे कई राज्यों में आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीनों शहरों में दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो श्रोताओं, अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट ले जाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप घर पर हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ इस खूबसूरत बारिश के मौसम का आनंद उठाइए। अब बात करते हैं तापमान की, तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, और कोलकाता में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।
1: And Vaishnavi, you were speaking about the weather. Yes, we hope and we pray that we get rains every day and we get the monsoon. But also we pray for the safety of the people and they maintain their precautions during this season.

0: याद करते हैं उन महान शख्सियतों को जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के प्रमुख स्तंभों में गिने जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को नई पहचान दी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में उन्होंने समाज सुधार से जुड़े कई विषयों पर लिखा और अपने हास्य व्यंग्य भरे लेखन से हिंदी साहित्य में विशेष स्थान बनाया। उन्होंने ब्राह्मण नाम से एक मासिक पत्रिका भी निकाली जो उस दौर की हिंदी पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान रखती थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम पुष्पांजलि, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और नाटक हटी हमीर व भारत दुर्दशा शामिल है।
1: Today we remember the legend Louis Armstrong, or as the world fondly called him, Satmo Pops, the man who made jazz sing. Armstrong rose from humble beginnings to become one of the most influential figures in music history. His career stretched across five decades from the roaring 1920s to the swinging 1960s. He wasn't just a trumpeter, he was a pioneer who shifted jazz from group improvisation to the brilliance of solo performance. With his mentor Joe King Oliver, Armstrong made his mark in Chicago, dazzling audiences and fellow musicians alike. Soon, New York called, and with Fletcher Henderson Band, he cemented his place as a star. But it wasn't only the trumpet. His voice, full of warmth and grit, made him one of the most recognizable singers of all time. He bent lyrics, improvised melodies, and gave the world the joy of scat singing. By the end of his career, Armstrong's influence had spread far beyond jazz, shaping popular music itself. His journey was proof that art can break barriers, and his legacy still sings. Here's Wonder, What a Wonderful World. Enjoy listening to this medley.
2: I see trees of green.

उन्होंने हकीकत, हीर रांझा, टैक्सी ड्राइवर और कुदरत जैसे यादगार फिल्में बनाई थी। चेतन आनंद ही वे महान निर्देशक थे जिन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को पहला बड़ा ब्रेक दिया था। आइए अब आपको उनकी फिल्म हकीकत का गीत मस्ती में छेड़ के तराना सुनाते हैं।

0: Today is the birthday of Sylvester Stallone. Born in 1946, Stallone's journey began with years of struggle, bit parts, extra roles, and endless rejection. Yet, like the characters he would one day embody, he refused to quit. Then came 1976, and with it, Rocky, a film he wrote, starred in, and poured his soul into. Rocky wasn't just a boxer. He was the underdog spirit of America, battling impossible odds and inspiring millions. The film catapulted Stallone into stardom, earning him 2 Academy Award nominations, Best Actor and Best Screenplay, a rare feat shared only with giants like Chaplin and Wells. Stallone himself was honored by the International Boxing Hall of Fame, a testament to the cultural impact of his creation. From grit to glory, Stallone's career is a masterclass in resilience. He showed the world that sometimes the fight outside the ring is the one that truly defines a champion. Dear listeners, let's listen to this inspirational piece from Rocky.
1: Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.
2: भारत के जाने माने उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को भी आज हम याद कर रहे हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरूभाई ने शुरुआती दिनों में यमन के अदन शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम किया और वहीं से व्यापार की बारीकियां सीखी। भारत लौटकर उन्होंने मसालों और कपड़े के छोटे कारोबार से शुरुआत की और आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी, जिसे उन्होंने अपने दम पर देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल कराया। उन्हें आम लोगों को शेयर बाजार से जोड़ने का भी श्रेय दिया जाता है और वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। वे मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, जो उस दौर में एक असाधारण उपलब्धि मानी गई। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान ने उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उनका स्पष्ट मत था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश की एकता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी सोच को उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा, जो आज भी व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है।
0: Today is the birthday of Ranveer Singh. Ranveer burst into the scene with band Baja Barat in 2010, a film that not only won him the Filmfare Award for Best Male Debut, but also announced the arrival of powerhouse performer. His collaborations with Sanjay Leela Bhansali gave us unforgettable portrayals. Ranveer Singh is more than a star. He's a phenomenon. Here's a song from his movie Dhurandhar.

0: 2012. Here's a song from the movie.
1: Naurai ma chilada chiga, avada hila chandra chi chandra chiga. Naurai ma chilada.
2: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी छोटी सी सुबह की मुलाकात आपके दिन की शुरुआत को और बेहतर बना पाई होगी।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में

0: विचार विमर्श का संचालन करेंगे। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद

0: 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे

0: राष्ट्रपति सुब्यांतो के साथ प्रम्बन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said that he will visit Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. He said the visit will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit to Indonesia and follows President Prabowo's state visit to India as a chief guest at the Republic.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा।

0: भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ा और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की कर दी है घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान रेंजर्स की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के प्रदर्शनों के बीच हुई है।
1: पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कल लंदन में प्रवासी कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली। दूसरी ओर पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सेवाएं बंद कर देने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं आशा निवेदी।
0: पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन में सैकड़ों दमकल कर्मी जंगल में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। स्पेन और इटली ने पुर्तगाल में 3 दिन से लगी भीषण आग को बुझाने में मदद के लिए अपने अतिरिक्त दमकल कर्मी भेजे हैं।
2: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस उपग्रह मानचित्रण एजेंसी के अनुसार कल तक जंगल की आग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता विभाग ने बताया कि स्पेन ने शुक्रवार को पुर्तगाल को अतिरिक्त सहायता के रूप में 120 दमकल कर्मी और 45 वाहन भेजे, जबकि इटली और स्पेन से 3 दमकल विमान भी मदद के लिए भेजे गए। स्पेन में पूर्वोत्तर गिरोना क्षेत्र में शुक्रवार से लगी जंगल की आग लगभग 2,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दस्तक दी है। चक्रवात और मूसलाधार बारिश से गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीपों पर असर पड़ा है। लगभग 290 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इससे विनाशकारी तबाही की चेतावनी दी है। इससे समुद्र में लगभग 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और 6वें विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ पलों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। वे हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में भी उन्होंने ब्राजील के लिए एकमात्र गोल किया, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी टीम को हार से बचा ना पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल में एक सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया है। और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good morning. This is Akashwani. I'm Anucha Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. Says visit will further deepen the comprehensive strategic partnership. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva today. India to host a 2-day BRICS Women Working Group meeting in Kochi

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் இணைவோம் 11:10 திரைகானம் நிகழ்ச்சியில்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक

0: एक ब्रह्मानंद मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said that he will visit Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. He said the visit will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit to Indonesia and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said that he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of the Australian Prime Minister Anthony Albanese. The nation pays homage to Bharatiya Jan Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9

0: काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a 7th consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2-7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन, सुधारों, डिजिटलीकरण

0: और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

0: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ तकानेन।
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह

पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करोलिना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने

0: हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी चेन्नई நேரம் 2:30 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: சமயம்.
1: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలత. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं. एक रिपोर्ट.
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे. वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा. जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है. 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे. जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा.
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है. सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्र स्तर की सहकारी समिति बनाई गई है.
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है.
2: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है. 2 दिन के इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता को मजबूत किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की. बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा. सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं. ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है. आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है. यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं. यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नेटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है. यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़े

0: at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: நூறு புள்ளி ஒன்று எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் நேயர்கள் கேட்கவிருப்பது தேநீர் நேரம். நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன்
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Bhavan, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Incomplete or late applications will not be considered. Detailed eligibility conditions and the prescribed application format is available on the department's recruitment page. Kindly refer to www.agriwelfare.gov.in. I repeat, it is www.agriwelfare.gov.in. The Krishna Water Disputes Tribunal under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, has invited applications for one post of a private secretary in Pay Matrix Level 8 on deputation basis. The post is open to eligible serving and retired employees of central government, state governments, union territories, public sector undertakings, autonomous bodies and statutory organizations. Applications for deputation must be forwarded through proper channel along with the prescribed performer, attested APARs for the last 5 years and vigilance clearance certificate, while retired candidates may apply directly. The completed applications should reach the Administrative Officer, Krishna Water Disputes Tribunal, 3 Court 1, Bhikaji Kama Place, New Delhi, within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application format is available on the official website. Do refer to www.chalshakti-dover.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम आमंत्रित कर रहा है प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक पद के लिए आवेदन। भारतीय नागरिक तय फॉर्मेट में अपने आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जरूरी योग्यता, अनुभव, आयु आदि की समुचित जानकारी के लिए देखिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम की वेबसाइट www.lgbrimh.gov.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर्तव्य भवन नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सदस्य कानूनी के पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इन वेबसाइट्स पर mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अंसारी नगर नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.aims.edu। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर की वेबसाइट nitrr.ac.in। वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक कीजिए advertisement.php को और वहां तमाम जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सिविल इंजीनियर अनुबंधात्मक, आंतरिक लेखा परीक्षक अनुबंधात्मक, रखरखाव अभियंता विद्युत अनुबंधात्मक, विजिटिंग कंसल्टेंट विशेषज्ञ डॉक्टर तथा विशेषज्ञ विजिटिंग कंसल्टेंट मनोविज्ञानी सलाहकार। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट nipper.hajipur.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता, रजिस्ट्रार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी तथा लाइब्रेरियन ग्रेड 1।

0: पूरी जानकारी के लिए देखिए एम्स मंगलागिरी की वेबसाइट www.aimsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड करिश्मा, द वीक हैज जस्ट स्टार्टेड, सो आई एम श्योर कि कुछ लोग को मंडे ब्लूज हो रहे होंगे, व्हेयरएज अदर पीपल विल बी ऑल एनर्जाइज्ड, बट नॉनदलेस आई एम श्योर दैट वी आर हियर टू गिव देम अ परफेक्ट रैप टू दे मंडे, बिकॉज हो सकता है आप ऑफिस अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के घर की तैयारी कर रहे हो एंड देन यू वॉन्ट टू नो ओके वॉट वर द हैपनिंग्स ऑफ द डे या फिर पूरी देश में क्या चल रहा था, एंड दैट इज वाई वी आर हेयर टू गिव यू परिक्रमा ऑफ द कंट्री। सो वील हैव ऑल दैट करिश्मा हैज टोल्ड यू, सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives at Jakarta in Indonesia a short while ago, beginning his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour.
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है.
2: Heavy rain affected normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh today.
1: रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के राजधानी कीव में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा घायल.
2: England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico.
1: और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नोआमी ओसाका महिला सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंची.
2: And as always, we start our show with our special segment, Dateline India. And the two topics that we're going to look at today are World Zoonosis Day and World Rural Development Day. So, Karishma, talking about the first topic, World Zoonosis Day. So, first, tell our listeners, what exactly is the meaning of zoonosis? Well, zoonosis diseases, they are kind of diseases that are transferred to humans through vertebrates. So, you know, rabies, jaise hai, you know, so all those, so that actually also reminds us how closely connected human health is with animal health and also our environment.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और यह दिन इतिहास में एक अहम पल है क्योंकि 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्वर ने रेबीज, यानी कि जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, इसके लिए खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई और एक युवा लड़के की जान बचाई थी। यह एक ऐसी बड़ी कामयाबी थी जिसने जन स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बदल दिया।
2: That's right. And before we go further, well, here's a quick question for our listeners. Have you ever wondered whether diseases can spread from animals to humans?
1: और क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों को जूनोटिक बीमारियां या आसान भाषा में समझे तो जूनोसिस कहा जाता है। ये ऐसे संक्रमण है जो जानवरों, जिनमें कि पालतू जानवर भी होते हैं, मवेशी और जंगली जानवर शामिल हैं, ये इंसानों के बीच फैल सकते हैं।
2: That's right, Karishma. And something surprising that around 60% of all known infectious diseases and up to 75% of newly emerging infectious diseases in humans, they come from animals.
1: तो रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, इबोला और यहाँ तक कि COVID-19 जैसी बीमारियों के बारे में जरा सोचिए। ये हमें याद दिलाती है कि जूनोटिक बीमारियों को समझना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है।
2: That's right. So how do these diseases spread, Karishma?
1: बहुत अच्छा सवाल है, तो चलिए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये बीमारियां फैलती कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि संक्रमण

0: संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से ये फैलती हैं। इसके अलावा जानवरों के काटने या खरोचने से या फिर दूषित खाना खाने से या असुरक्षित पानी पीने से ये फैल सकती हैं।
1: Yes, as you said that, and in fact, not just contact with the, you know, infected animals, but also their waste or some bodily fluid that can cause these diseases. Even insect carriers such as mosquitoes and ticks, they are responsible for zoonotic diseases.
0: सही कहा, और चाहे खाना हो, पानी हो, कीड़े मकोड़े हो, या फिर सीधे संपर्क हो, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे संक्रमण जानवरों और इंसानों के बीच फैल सकता है.
1: And why do you think that these diseases are becoming more common?
0: इसके कई कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि वनों की कटाई और वन्य जीवों के आसपास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव क्षेत्रों में शहरों का विस्तार होना भी लगातार इसके कारण बनते जा रहे हैं.
1: Yes, in fact, intensive farming is also responsible, and poor hygiene and sanitation, of course, are one of the reasons.
0: तो जैसे जैसे इंसान और जंगली जानवर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बीमारियों के एक दूसरे में फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. इसमें हम वन हेल्थ के अहम कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं. वन हेल्थ का मतलब यह समझना है कि लोगों, जानवरों और पर्यावरण की सेहत आपस में कैसे जुड़ी हुई है. एक की सुरक्षा करने से दूसरे की सुरक्षा में भी मदद मिलती है.
1: And now let's talk about prevention, because good habits can make a big difference. So here's a quick checklist for everyone. Well, wash your hands with soap and running water for at least 20 seconds after touching any animal or anything that comes in contact with them, like their bedding or their waste. Avoid handling sick or dead wild animals with bare hands. Protect yourself from mosquitoes, fleas and tick bites by using repellents and wearing protective clothing.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण नियमित रूप से करवाना चाहिए, खासकर रेबीज के खिलाफ, और उन्हें नियमित रूप से पशु चिकित्सक के पास जांच के लिए भी ले जाना चाहिए. पालतू जानवरों को पिस्सू, किलनी और परजीवियों से बचाने के उपाय भी करने चाहिए. इसके अलावा पालतू जानवरों के मलमूत्र को सुरक्षित और साफ सुथरे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए. वहीं मांस, पोल्ट्री और अंडे को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाना बेहद जरूरी है.
1: And some simple steps like these, they protect not only us, but also our families and our communities. So on this World Zoonosis Day, let's remember that caring for animals, protecting nature and maintaining good hygiene are all essential for a healthier world.
0: तो इसी के साथ श्रोताओं, हम सब मिलकर जानकारी रखकर, पालतू जानवरों की जिम्मेदारी से देखभाल कर, टीकाकरण को बढ़ावा देकर और वन्य जीवों तथा पर्यावरण का सम्मान करके जूनोटिक बीमारियों के फैलाव को कम कर सकते हैं.
1: So stay healthy, stay informed and remember, healthy animals, healthy environment, healthy people, one health for one future. And now we come to the second topic, World Rural Development Day.
0: तो आज 6 जुलाई को हम विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मना रहे हैं. एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि मजबूत गांव ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं.
1: Absolutely, Karishma. And the observance was established by the United Nations General Assembly in the year 2024. To highlight the importance of improving the lives of rural communities by tackling challenges like poverty, inadequate infrastructure, unemployment and food insecurity while promoting sustainable development.
0: तो हमारे सुनने वालों के लिए एक और यहाँ पर सवाल है सायरा, कि हमारी थाली में जो खाना होता है वो कहाँ से आता है?
1: Well, that's right. Of course, it all begins in our villages. Rural communities are the backbone of our food system, Karishma. They are where crops are grown, livestock is raised and millions of livelihoods are sustained.
0: तो असल में दुनिया के लगभग 80% सबसे गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और इन समुदायों को हर दिन जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और पलायन के दबाव का सामना करना पड़ता है. फिर भी उनमें अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जबरदस्त क्षमता है.
1: That's right. That's why investing in rural development means investing in a more resilient and prosperous future for everyone.
0: और जब ग्रामीण विकास की बात आती है, तो भारत अपने समुदाय संचालित और तकनीक आधारित दृष्टिकोण के साथ एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है.
1: Exactly. Through digital technology, better infrastructure, financial inclusion and people-centered programs, India has significantly reduced multidimensional poverty and narrowed the rural-urban gap.
0: तो श्रोताओं, एक और छोटा सवाल यहाँ आपके लिए, कि क्या आप किसी ऐसी सरकारी पहल का नाम बता सकते हैं जो

0: ने ग्रामीण सड़कों की कायापलट कर दी हो?
1: Well, there are many. In fact, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is the prominent one. This is the flagship program that has provided all-weather road connectivity to thousands of villages, making it easier for people to access schools, hospitals and markets.
0: और इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी पहलों के जरिए सुरक्षित पेयजल और बेहतर आवास भी प्राथमिकता बन गए हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. ग्रामीण भारत की एक और बड़ी ताकत महिलाओं का अद्भुत योगदान भी है.
1: Absolutely. More than 10 crore women have been mobilized into self-help groups or SHGs under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. These women are becoming entrepreneurs, community leaders and agents of social and economic change.
0: Aur vittiya samaveshan ne bhi ek krantikari bhumika nibhai hai. Jan Dhan, Aadhaar Mobile, Trinet aur Digital India pehal ke zariye ab lakhon gramin nagrikon ke bank khaton, digital payment, internet sevaon aur sarkari labhon tak seedhi pahunch ho gayi hai.
1: And recently, another important milestone was achieved with the implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act, which came into effect from 1st of July.
0: और इसके साथ ही यह कानून हर पात्र ग्रामीण परिवार के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत वेतन रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करके ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करता है. साथ ही यह टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने पर बल देता है.
1: That's a significant step towards building stronger villages and creating sustainable opportunities closer to home. Every road built, every household connected with clean water, every woman empowered and every young person given an opportunity contributes to a stronger and more resilient India.
0: तो आइए एक बेहतर भविष्य के लिए समावेशी विकास, टिकाऊ खेती, डिजिटल सशक्तिकरण और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास का समर्थन करें. मजबूत गांव, मजबूत भारत, टिकाऊ भविष्य. और इसके साथ ही अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
1: Well, the Ministry of Cooperation has completed 5 years of its journey with a renewed focus on strengthening India's cooperative movement. Marking its 5th foundation day with the vision of Sahakar Se Samriddhi, today in New Delhi, the Ministry highlighted major achievements including digital transformation of primary agricultural credit societies or PACs, expansion of rural cooperative infrastructure and new initiatives aimed at boosting dairy, agriculture, banking and rural livelihoods.
2: To mark the 5th Foundation Day, the Ministry today transformed 50,000 primary agricultural credit societies into e-PACs and laid foundation stones for 47 grain storage godowns to strengthen rural storage infrastructure. A milk supply review dashboard was also launched for the National Dairy Development Board along with the two new digital platforms for urban cooperative banks, Sahakar CBS and Sahakar Sahyogi. The Ministry was established on 6th of July 2021 to provide rural credit to dairy, fisheries, housing and marketing cooperatives. It has implemented more than 152 reform initiatives since its formation. Cooperative institutions have been established in over 2,55,000 gram panchayats across the country. More than 6 lakh cooperatives are functional among over 8 lakh registered cooperatives. Meanwhile, the dairy sector is being strengthened under White Revolution 2.0 with a focus on increasing milk procurement by 50% by 2028-2029. The ministry also highlighted the growth of Bharat Taxi, India's first cooperative-based mobility platform, which has now over 6 lakh registered drivers and nearly 36 lakh customers. These reforms have strengthened grassroots institutions, improved digital access, expanded rural infrastructure, and created new opportunities for farmers, women, and cooperative members. Vidishani and Arzu, Soumya Sharan for Parikrama.
0: उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई को पौधारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन करेगी. वन विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है और इस बार भी एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा. सभी विभागों, संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन आदि के सहयोग से व्यापक जन सहभागिता के साथ इस महाअभियान को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. एक रिपोर्ट.
3: उत्तर प्रदेश सरकार पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जन सहभागिता से पूरे प्रदेश में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपने का अभियान चला रही है. इसके लिए नोडल वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और अधिकारियों की भी निरंतर बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे. वहीं वन मंत्री भी अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ

0: ठक्कर इसकी सफलता को लेकर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्र और प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूल कॉलेजों समेत व्यापक जन सहभागिता से उत्सव के रूप में महाअभियान चलेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि व्यापक जन सहभागिता के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के विभाग मिलकर पौधारोपण करेंगे। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15.5 करोड़ पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3.25 करोड़, उद्यान विभाग 1.50 करोड़, पंचायती राज विभाग 1.22 करोड़ पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। नोडल विभाग वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन होगा, जिसने इस अभियान को लेकर जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठकें भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार हर वर्ष नवीन विशिष्ट वन स्थापित करती है। इस थीम के तहत इस वर्ष के पौधारोपण महाअभियान 2026 में समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की जा चुकी है। अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा, आम भंडारा भी होगा। मिशन छाया के तहत गर्मी से राहत देने के लिए सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर छायादार पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका, 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर भाई बहन पौधारोपण और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर एक पेड़ गुरु के नाम भी चलाया जाएगा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे भी पौधारोपण किया जाएगा। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: And now we head to Odisha. Well, with elaborate preparations underway for the famous, world-famous Rath Yatra in Puri, the Odisha government has entered the final phase of its administrative readiness. Chief Minister Mohan Charan Manji today chaired the final meeting of the Rath Yatra Coordination Committee and directed all departments to ensure impeccable arrangements for the annual festival. Let's hear more from our correspondent.
2: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has directed all departments to ensure a faultless, safe and incident-free Rath Yatra through impeccable interdepartmental coordination and meticulous execution of every arrangement. Chairing the final meeting of the Rath Yatra Coordination Committee in Puri this morning, Mr. Majhi described the annual chariot festival as an enduring embodiment of Odisha's rich spiritual and cultural legacy, attracting millions of devotees from across the world. He laid particular emphasis on the security, safety and dignity of women, devotees and reviewed preparedness for crowd management, multi-layered security, traffic regulation and other essential civic services. Expressing confidence in the collective efforts of all stakeholders, the Chief Minister said every ritual should be conducted with precision and according to schedule to ensure a flawless Rath Yatra, scheduled to be held on 16th of this month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
3: वहीं गोवा में आज मोटरसाइकिल परिवहन सेवा को डिजिटल मंच से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मजे ड्राइवर ऐप के शुभारंभ के साथ ही अब लोग मोबाइल के जरिए राज्य में कहीं से भी मोटरसाइकिल सेवा बुक कर सकेंगे। इस पहल से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की उम्मीद है। पेश है विशेष रिपोर्ट।
4: गोवा में आज मजे ड्राइवर ऐप का शुभारंभ पणजी के मिनेजिस ब्रगांजा सभागार में किया जाएगा। इस ऐप को मोटरसाइकिल पायलट संगठन ग्रेसफुल गोवा सुपर ऐप लिमिटेड और परिवहन संचालनालय के सहयोग से तैयार किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस ऐप के जरिए लोग अपने मोबाइल फोन से राज्य के किसी भी हिस्से में आसानी से मोटरसाइकिल सेवा बुक कर सकेंगे। इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, खासकर उन जगहों पर जहां अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लोगों को सुरक्षित और किफायती यात्रा सुविधा देना तथा मोटरसाइकिल पायलटों को डिजिटल माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि यह ऐप राज्य की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक तथा आधुनिक बनाने में मदद करेगा। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: और श्रोताओं, इसके साथ ही अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और 6वें विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने यह घोषणा की।
1: Time now for some business news. Well, the trading week kicked off on a very strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. Sensex climbed 521 points to close at 78,285.

0: इसके साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित प्रदेश राज्य साहित्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: Today is also the birth anniversary of Urdu poet Anwar Jalal Puri. He is known for translating the Bhagavad Gita from Sanskrit to Urdu and shayari form mein unhone isko translate kiya, not just in the literal form. And well, he received the Padma Shri posthumously from the President of India and the Yash Bharati Award from the Government of Uttar Pradesh.
2: Tumhare ghar mein darwaza hai lekin tumhe khatre ka andaaza nahi hai. तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं।
1: That was Anwar Jalal Puri's voice and अपना शेर पढ़ते हुए थे खुद वो शायर।
0: और इसके साथ ही आज हिंदी सिनेमा के प्रख्यात निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता चेतन आनंद की पुण्यतिथि है। वर्ष 1946 में उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने इतिहास रच दिया और ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कान फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था और जिसे आज पालमे द ओर के नाम से जाना जाता है।

0: और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के फिल्म निदेशक, पटकथा लेखक और शिक्षण मणिकौल की आज पुण्यतिथि है। मणिकौल ने भारतीय सिनेमा में अपनी विशिष्ट शैली के साथ ही एक नई पहचान बनाई और उनकी प्रदर्शित पहली फिल्म उसकी रोटी को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने अषाढ़ का एक दिन, दुविधा, सतह से उठता आदमी, सिद्धेश्वरी, इडियट और नौकर की कमीज जैसी कई फिल्मों के निर्देशन किए।
1: निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं।
2: ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि
1: वे गुप्त राज्य की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है।
3: And there's a very lesser known film, Karishma, of Manikol called Badal Dwar.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी

0: जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रभुवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी சென்னை, நேரம் 6:05. நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம். 6:10 விஸ்லேஷன், 7:10 இளைய பாரதம். இளைஞர்கள் இசையில் பங்கேற்பவர்கள் ஜே பர்ஷித், சி துளசி ஆகியோரின் பாட்டு கேட்கலாம். எஸ் ஆதித்யா சோமஸ்கந்தன் அவர்கள் வயலின், எம் அரவிந்த் அவர்கள் மிருதங்கம். 7:50 செய்தி கதமம், 8:10 திரை கானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 பப்ளிக் ஸ்பீக்.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे E20 ईंधन की। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर E20 को लेकर कई तरह की बातें और दावे सामने आए हैं। इन्हें लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल उठे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने और

0: सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने संबंधित मंत्रालयों की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने E20 ईंधन से जुड़े सवालों का जवाब दिया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर E20 ईंधन है क्या, इसे लेकर कौन कौन से भ्रम फैलाए जा रहे हैं और उनके पीछे का सच क्या है, और ये पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, हाल ही में E20 कार्यक्रम को लेकर एक दावा काफी चर्चा में रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में E20 कार्यक्रम को केवल एक प्रयोग बताया है और इसका असर अभी देखा जाना बाकी है, लेकिन बाद में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया और स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। अदालत में सुनवाई एथेनॉल के आवंटन से जुड़े मामलों के हस्तांतरण पर हुई थी, जो अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित है, न कि E20 कार्यक्रम की उपयोगिता या उसकी सफलता पर। श्रोताओं, ये मामला इकलौता नहीं है, ऐसे कई दावे और भ्रामक खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आखिर E20 को लेकर फैले इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए एक एक करके इन मिथकों और उनके पीछे के तथ्यों को समझते हैं।
1: सबसे पहले बात माइलेज की। अक्सर कहा जाता है कि E20 से गाड़ी का माइलेज 30% तक कम हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये बात सही नहीं है। असल में माइलेज इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि गाड़ी कैसे चलाई जा रही है और वाहन का रखरखाव कैसा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि E20 इस्तेमाल करने पर वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी और बीमा का दावा स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वाहन कंपनियों और बीमा क्षेत्र ने स्पष्ट किया है कि तय मानकों के अनुसार E20 का इस्तेमाल करने से वारंटी या बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर ये दावा भी किया जाता है कि गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल सीधे गन्ने का रस नहीं होता, इसे गन्ने के रस, शीरे, टूटे हुए चावल और मक्का जैसे कच्चे पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता जाँच पूरी होने पर ही इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। एक और दावा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये भी सही नहीं है। एथेनॉल संयंत्र में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए केवल लगभग 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि E20 में चीनी होने के कारण चींटियां और मधुमक्खियां वाहन के फ्यूल टैंक के पास जमा हो जाती हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने इसे भी गलत बताया है। उनका कहना है कि ईंधन में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल में कोई चीनी नहीं बचती, इसे पूरी तरह शुद्ध करने के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसलिए E20 और चींटियों या दूसरे कीड़ों के बीच किसी तरह का वैज्ञानिक संबंध नहीं है। एक और भ्रम यह है कि इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे ईंधन और फ्यूल टैंक खराब हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वाहन के फ्यूल टैंक में पानी जाना ठीक नहीं होता, चाहे उसमें सामान्य पेट्रोल हो या E20। आधुनिक वाहन में इसे रोकने के लिए पहले से ही डिजाइन और सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं।
0: श्रोताओं, E20 को लेकर सबसे बड़ा सवाल पुराने वाहनों को लेकर उठाया जाता है। कई लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल सुरक्षित है। हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में मारुति सुजुकी के कॉरपोरेट मामले के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि E20 लागू करने से पहले पुराने वाहनों पर भी व्यापक परीक्षण किए गए थे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया।
2: इंडिया मैंडेटेड, भारत में वर्ष 2023 से E20 ईंधन को ध्यान में रखकर गाड़ियों के निर्माण की व्यवस्था लागू की गई। उससे पहले E10 के हिसाब से गाड़ियां बनती थी, इसलिए 2023 के बाद बनी नई गाड़ियों और E20 ईंधन को लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। लोगों के मन में सवाल ज्यादा उन गाड़ियों को लेकर है जो 2023 से पहले बनी थी। क्या उनमें E20 ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है कि वाहन बनाने वाली कंपनियां अपनी गाड़ियों की हर स्तर पर अच्छी तरह जांच और परीक्षण करती हैं। गाड़ियों को इस तरह बनाया जाता है कि उनमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने 2023 से पहले बनी E10 गाड़ियों पर भी E20 ईंधन के साथ सभी जरूरी परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में इंजन पुर्जों की घिसाई, जंग लगने या गाड़ी की उम्र पर किसी तरह का नुकसान नहीं पाया गया, इसलिए हमारे परीक्षणों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे चिंता की जरूरत हो।
3: And we have not found anything of concern.

0: आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण भी इसी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी EBP को आइए हम विस्तार से समझते हैं।
1: भारत अपनी जरूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव या आपूर्ति में रुकावट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम थी, जो वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद वर्ष 2025-26 में बढ़कर 20% पहुँच गई है। इस अवधि में एथेनॉल की खरीद करीब 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर से अधिक होने का अनुमान है। वहीं देश की उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 421 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई है। वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक इस कार्यक्रम से देश ने 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। साथ ही 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल की जरूरत कम हुई, लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और गन्ना, मक्का तथा चावल से बनने वाले एथेनॉल की बढ़ती मांग से किसानों के लिए भी आय के नए अवसर बने हैं। भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, जापान, कनाडा, थाईलैंड और यूरोपीय देश भी वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। जापान ने भी चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपनाया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: श्रोताओं, भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को केवल एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं विषयों पर हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा क्षेत्र की विशेषज्ञ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल।
3: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। इसे सोच समझकर, वैज्ञानिक तरीके और चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया गया। साल 2013-14 में पेट्रोल में करीब 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। खासकर 2018 के बाद इस कार्यक्रम को तय योजना के तहत आगे बढ़ाया गया। इस पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की गई। ऑटोमोबाइल कंपनियों और जांच करने वाली संस्थाओं ने इसकी अच्छी तरह जांच और परीक्षण किए। दुनिया के कई देश भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और ईंधन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। हाल में पश्चिम एशिया में आए संकट के दौरान भी इसका फायदा देखने को मिला। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात की जरूरत कुछ कम हुई और देश भर में लोगों को ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली।
0: एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल पेट्रोल में एक नया ईंधन मिलाने की पहल नहीं है। ये कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने, प्रदूषण घटाने और किसानों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में भारत की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्त।

0: 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these codes, before these numbers, if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza arthi khabrein aap tak laate hain. Shrotaon, aaj kyunki somvar hai aur har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe is karyakram mein shamil karenge. Is karyakram mein vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn aap humse pooch sakte hain. Inhe poochne ke liye aap hame call kar sakte hain 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज़ थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजार में मिला जुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई. दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की. आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया. विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 0.5% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.5% से अधिक की तेजी देखी गई.
0: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.4%, while the small-cap 100 index gained more than 0.7%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks quality tilt index added 1.4%. In contrast, PSU bank index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं.

0: श्रोताओं, रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
1: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है। दूसरा, जो बाज़ार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो ख़त्म हुआ है
0: जी,
1: उसमें कॉरपोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना ख़राब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप GST लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाज़ार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है।
2: Right, Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
1: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
2: We'll come back to that. But before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
3: Namaskar, sir.
2: Namaskar.
3: Deepshikha, madam, ko bhi namaskar, ma'am.
1: Namaskar, Amit ji.
3: Ek to Nishit sir ne sawal puch liya hai kisi se lekar. मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले दो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी मैम, तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद।
1: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट लें, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फ़ायदा उसको काफ़ी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर। और अगर

0: नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहाँ पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफ़ी है, तो इसलिए उसका फ़ायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है। कॉपर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफ़ी हद तक डिमांड जो है इकॉनमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है। और दूसरा आपका जो सवाल था
1: परफॉर्मेंस, यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
0: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफ़ी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है।
1: Right.
2: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बहुत देखिए बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में, तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूँगी मगर इसके बाद।
0: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफ़ी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफ़ी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
2: जी।
0: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
2: जी।
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई देगा।
1: Yeah, Prachi, you talked about the banking sector, but Deepshikha, just a couple of days back, we saw Prime Minister inaugurating that Sanand plant of the semiconductors, you know, wherein India would be producing, that plant, the CG plant would be producing more than 5 billion chips, you know, annually, and that's a humongous number, considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially for countries like China and Taiwan, so on and so forth, because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
0: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at and the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything
1: across the board, yes.
0: Across sectors.
1: Yes.
0: So definitely it is a sunrise sector. But we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have an interplay with infrastructure development.
1: Electronics,
0: definitely.
1: Yes.
0: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then

0: definitely the demand would be strong than some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer, you know, sectors, the FMCG.
1: Absolutely.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. आज प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों पर मंदड़िए की पहल देखी गई. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.3% गिरा. उधर जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक मामूली गिरावट के साथ सपाट स्तर पर कारोबार करता नजर आया.
1: दीपशिखा, इफ यू टॉक अबाउट द एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स, मोस्टली वी सी इन द एशियन मार्केट्स टुडे इट्स क्वाइट मिक्स्ड, यू नो, साउथ कोरियाज कॉस्पी डिक्लाइनिंग, निकी एज वेल. And if we look at the European indices, you know, the Germany's DAX and France's CAC were also kind of very flat. So can we say that the initial kind of euphoria which was there, you know, with the Iran-US talks happening, Hormuz opening and all, kind of fizzling out a bit?
0: Nishit, you know, if you look at the Asian markets for the past few sessions, they've been under pressure because of tech. If you remember, Kospi, tremendous, you know, upheaval there. So the impact of AI, these countries which had a very large sort of interface and they were looking at AI in a big way, they have like really sort of been impacted. With regard to Europe, I think it's an interesting trend because it was expected, like you said, with the opening of Hormuz, maybe the performance, we were expecting it to better. But I think probably Europe is in a wait and watch mode, especially with the Fed meeting likely to happen very soon. So maybe, you know, they're waiting for that.
1: We'll come back to that.
2: दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ जी, धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम्स बताते हैं, एफडी के एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है? आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था. वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक? ये तेल वो खत्म हो जाएगा, जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद
0: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफ़ी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के. फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए. यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है. अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है. दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था. तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें. इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है.
1: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई. सेतुपति,
4: गुड इवनिंग टीम.
1: गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग सेतुपति.
4: दिस इज रिगार्डिंग द एथेनॉल 90%.

0: तेजी से वो बढ़ा था और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है.
1: Right, and moving on to oil sector now, the global crude oil prices fell moderately today after OPEC Plus agreed to further increase its output targets from August. Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120 to $71, and the WTI trading at around $68, how do you see this panning out in the coming days? Would it be seeing another spike or coming down to around $50 or $55?
0: Well, I think for Indian economy, crude sliding to these levels, definitely a very good news, very positive news. But if you see, you know, the kind of destruction that the entire oil and gas infrastructure saw during the conflict, there is apprehension that the supplies may not rise to pre-conflict levels. So while you know, OPEC has said, OPEC Plus, they want to, they will boost supplies. There's Venezuela crude also, which is sort of coming to the market, which will keep the pressure on in the crude market. It is expected that it may sort of not really dive below, but remain at these levels.
1: And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.3% down at 147,410 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 237,330 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.3% ghatkar 147,000 rupees per 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.1% ludakkar 237,000 69 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. दीपशिखा, कार्यक्रम में आने, हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद प्राची.
1: थैंक यू दीपशिखा. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. The benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend. And global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Prachi Priya signing off. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा

0: समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India. He said the government is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee with a 2-year national celebration. The Prime Minister said this celebration began on July 6th of last year and will continue until July 6th of next year.
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक

वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में मिले आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं को भी मीडिया के सामने प्रदर्शित किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र

0: में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल

0: माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी

0: विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, UPI, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का

एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की

0: और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है
0: जी,
1: वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज़ और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं, एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे ही नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कोई सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पर नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फ़ोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी, रवि।
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
3: जी सबसे पहले तो विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर मैं जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है, जो मतलब

0: टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे और ये इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
2: जी।
1: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है
2: जी।
3: जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
2: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
2: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है। तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
2: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज, ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन्स है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप

0: किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है, उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
2: आपका। नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही है गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ?
3: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ। तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट। 1930 में ये भी सुविधाएँ हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
3: नमस्कार,
1: नमस्कार जी। नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
3: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
3: स्टूडेंट्स
4: जी, विद्यार्थी
3: जी सर। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल

0: स्कूल से 12वीं तक में हैं, तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
1: नंद कुमार जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट में था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शियरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फ़ोन जो होता है बहुत सिंपल फ़ोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना, वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फ़ोन से, की फीचर फ़ोन से किया, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्ट

0: फ़ोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फ़ीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फ़ीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फ़ीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से, कि आप कब उनको OTP दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं, वो थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन, दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए, या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वह कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वह चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है, जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।

0: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: ये बहुत अहम सवाल है
0: जी।
1: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए, तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
0: बिल्कुल,
2: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती

0: पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का फैसला भी लिया गया। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा है कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ था और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mukherjee with a two-year national celebration, which will continue until the 6th of next year. The Sriram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after the name surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. In Jharkhand also, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. And widespread heavy rainfall has slashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. The Sardar Sarovar Narmada Dam stands at 64.57% capacity. Heavy rains continue to batter Mumbai and coastal Maharashtra, disrupting normal life and triggering landslides, flooding and widespread damage, and the IMD has issued red alerts for several districts. Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession today, honouring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flag-draped coffin, along with those of several family members, was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. They were killed in an airstrike on the 20th of February at the outset of the war launched by Israel and the United States. The turnout came as Tehran continues negotiations with the United States on a permanent end to the conflict, which claimed the life of the 86-year-old cleric. The mourning will continue through Thursday, when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. In the FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद द्वारा आवश्यक आपूर्ति की नाकाबंदी से क्षेत्र में उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने के लिए भारत से सहायता की अपील की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। यूक्रेन में राजधानी कीव पर रूसी हमलों में 18 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका का सामना कल सुबह सिएटल में बेल्जियम से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया

0: ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। मंदिर के पत्थर की नकाशी में रामायण के दृश्य चित्रित हैं। ये दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय महाकाव्य समुद्र पार करके जावा की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। आज भी इंडोनेशिया के प्रसिद्ध रामायण वेले के माध्यम से ये महाकाव्य जीवित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। इस बीच विदेश मंत्री ने कोमोरोस संघ के विदेश मंत्री मबाए मोहम्मद तथा वहां की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर श्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच विजन महासागर से संबंधित समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने मलावी के विदेश मंत्री जॉर्ज टी चाम्पोडा और वहां की जनता को भी उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां के लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। क्षेत्र में पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। एक अधिकारी के अनुसार लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। खबरों के अनुसार पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। इसके कारण लोगों को भोजन और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात बिगड़ने के कारण कई लोग नियंत्रण रेखा पार कर भारत आने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने भारत सरकार से नियंत्रण रेखा खोलने की अपील की है। यह अपील ऐसे समय में की गई है जब खबरों में दावा किया गया है कि प्रदर्शन नहीं रुकने पर पाकिस्तान की सेना ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। वाहन को एक इमाम की दरगाह की जालीदार बनावट की तरह सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम यात्रा की व्यवस्था संभाल रहे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल हसन जादे ने बताया कि पार्थिव शरीरों को लगभग 12 घंटों तक तेहरान की सड़कों से ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा। शोक की अवधि के दौरान प्रशासन ने राजधानी की कई प्रमुख सड़कों को बंद किया है। देश का हवाई क्षेत्र भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। इसके बाद आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच ईरान संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत भी जारी रखे हुए है। खबरों के अनुसार अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ वर्ष 2020 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ से कहीं अधिक दिखाई दी। उस समय 10 लाख से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
0: इंसानों और जानवरों के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। ये बीमारियां जन स्वास्थ्य, जानवरों की सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन

0: विदेशी नेतृत्व में वन हेल्थ अप्रोच भारत की जन स्वास्थ्य रणनीति का अहम स्तंभ बन गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 18 लोग मारे गए हैं जबकि 60 घायल हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। इन हमलों से पोडिलस्की जिले में एक आवासीय इमारत ढह गई। डारनित्सिया जिले में कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इन इमारतों के मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये हमले तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुए हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की आशा है। इंडोनेशिया में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक कल्याण के लिए इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपना रहे हैं। जकार्ता, बाली और कई अन्य शहरों के पार्क, स्कूल, फिटनेस सेंटर और सामुदायिक स्थलों में नियमित योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस देश के नागरिक भारतीय शैली की फिटनेस पद्धति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। वहीं सुबह साढ़े पांच बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी। इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में मैक्सिको को 3-2 से हराया जबकि नॉर्वे ने उलटफेर करते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद द्वारा आवश्यक आपूर्ति की नाकाबंदी से क्षेत्र में उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने के लिए भारत से सहायता की अपील की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives at Jakarta in Indonesia, beginning high-stakes three-nation Indo-Pacific tour. People of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir appeal to India for aid as blockade of essential supplies by Islamabad sparks humanitarian crisis in the region. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. In Ukraine, 18 people killed in Russian strikes on capital Kiev. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Co-host USA to face Belgium in Seattle tomorrow morning. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed

0: With this, we come to the end of this edition of Western Music on 100.1 FM Gold. With this, this is your Ajayani signing off from the studios of All India Radio of Akashwani Chennai, saying goodbye, sayonara, take good care of yourselves. Time for news from Delhi.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री

0: उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee

0: Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these codes, before these numbers, if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. Shrotaon, aaj kyunki somvar hai aur har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe is karyakram mein shamil karenge. Is karyakram mein vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn aap humse pooch sakte hain. Inhe poochne ke liye aap hame call kar sakte hain 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered

0: professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई। दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की। आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग आधा प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई।
0: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note, with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose over 0.4%, while the Small-Cap 100 Index gained more than 0.7%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks quality tilt index added 1.4%. In contrast, PSU bank index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained अनचेंज्ड।
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
2: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है। दूसरा, जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप GST लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है।
0: Right, Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we

0: saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
1: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Companies, some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
0: We'll come back to that, but before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
2: Namaskar, sir.
0: Namaskar.
2: Deep Sikha, madam, ko bhi namaskar, ma'am.
1: Namaskar, Amit ji.
2: Ek to Nishit sir ne sawal puch liya IT se related. Main dusra sawal puch leta hu. Metal ke bare mein puch raha tha, ma'am.
1: Ji.
2: Ki haliya dino mein, pichle do teen mahine mein, metal ke stocks kaafi, ma'am. To kya reason tha? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद.
1: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं. तो फेरस में आप देखें, जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर. और अगर आप नॉन फेरस में देखें, तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफी है, तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है. कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है, उस हद तक वो दर्शाता है. और दूसरा आपका जो सवाल था, परफॉर्मेंस,
0: यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
1: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के. तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है. अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है.
0: right.
3: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ. बहुत हमारा, हम देखिए, बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में. तो इसे आप अब क्या ये इस तरीके से ही रहेगा, या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी, मगर इसके बाद.
1: प्राची, अगर आप देखें, फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
3: जी.
1: तो ब्याज दरों का मूवमेंट, और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में. तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन वो कुछ

0: तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
1: जी.
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे.
2: या प्राची यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर बट दीपशिखा just a couple of days back we saw Prime Minister inaugurating that Sanand plant of the semiconductors, you know, wherein India would be producing that plant, the CG plant would be producing more than 5 billion chips, you know, annually, and that's a humongous number considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially for country from countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now, with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
0: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at and the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything
2: across the board, yes.
0: Across sectors.
2: Yes.
0: So definitely it is a sunrise sector, but we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have a interplay with infrastructure development.
2: Electronics,
0: definitely.
2: Yes.
0: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer sectors, the FMCG.
2: Absolutely.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं, जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है, आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम्स बताते हैं, एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है? आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था. वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक? ये तेल वो खत्म हो जाएगा, जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद.
0: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे.

0: the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं. आकाश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: हेलो गुड इवनिंग मैम सभी को.
1: गुड इवनिंग
2: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ. मेरा सवाल ये है जैसे मैम इस टाइम नोएडा वो सोना खरीदना ठीक है और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं और चांदी भी और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं या बढ़ भी सकता है बाद में दोनों बातें हो सकती है आप बताइए मैम.

0: मिल सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए। मैं
1: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है। क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना। तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
2: Right, and moving on to oil sector now, the global crude oil prices fell moderately today after OPEC Plus agreed to further increase its output targets from August. Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120 to $71, and the WTI trading at around $68. How do you see this panning out in the coming days? Would it be seeing another spike or coming down to around $50 or $55?
1: Well, I think for Indian economy, crude sliding to these levels, definitely a very good news, very positive news. But if you see, you know, the kind of destruction that the entire oil and gas infrastructure saw during the conflict, there is apprehension that the supplies may not rise to pre-conflict levels. So while you know, OPEC has said, OPEC Plus, they want to, they will boost supplies. There's Venezuela crude also, which is sort of coming to the market, which will keep the pressure on in the crude market. It is expected that it may sort of not really dive below, but remain at these levels.
2: And in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.3% down at 147,410 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 237,330 rupees per kilogram a short while ago.
3: Multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.3% ghatkar 147,000 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.1% लुढ़ककर 2,37,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। दीपशिखा, कार्यक्रम में आने, हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्राची।
2: थैंक यू दीपशिखा। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend. And global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Prachi Priya signing off. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30

बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15-वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: எல்லாப்பும் பொய்யா போச்சு அம்மம்மா.
1: பழைய பரமசிவனே.

0: இதுவரை நேயர்கள் கேட்டது இரவின் மடியில் ரோஜா மற்றும் தேவர்மகன் பட பாடல்கள். கேட்டு ரசித்தோம். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओ कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं।

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes 3

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी

0: ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर

चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்பது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में खतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि

0: तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the king and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Mr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Jaishankar has been meeting his counterpart.